कहीं नहीं, झगड़ा बढ़ता गया और कुछ लम्हे के बाद तलाक वाकई हो गई। नमक की वजह से तलाक, सुभानअल्लाह। ये हमारे घर हैं, इतने नाजुक हमारे घर हो चुके हैं कि एक छोटी सी गलती हमारे घर को तोड़ दे। कहां गए गुरुद्वारे? हम सीनाकार के कहते कि हम नबी या करीम वसल्लम की उम्मती हैं, तो फिर आप वसल्लम के अखलाक क्यों नहीं लेते? नबी रहमत वसल्लम जैसी जिंदगी क्यों नहीं गुजारते हो? पिछले जिसमें मैंने चंद मिसालें बयान की थी कि इस दुआज जिंदगी नबी करीम वसल्लम की कैसे थी। उम्मात मुमिनीन में से कोई गलती करती तो नबी करीम वसल्लम किस तरीके से उस गलती का हल, उस गलती को दूर फरमाते और कैसे उसका हल तलाश करते। और आज हमारे घर टूट जाते हैं नमक की वजह से। सुभानअल्लाह, ये कौन से घर है? बच्चे ने गलती की, किक मारी बच्चों को, उसकी हड्डी तोड़ दी। सुभानअल्लाह, ये वालदेन है मेरे, वो बच्चे नहीं जो गलती नहीं करते। उसे 10 दफा तो मना किया, आप 20 दफा मना करें वो गलती करेगा, उसकी उम्र ही ऐसी है। अपने बच्चे की हड्डी तोड़ दी। मैं जानता हूं कि बाज लोग बाज औकात परेशानी की वजह से, थकन की वजह से, गर्मी की वजह से, ब्लड प्रेशर की ज्यादती की वजह से, जब ये सब मिल जाते हैं तो गुस्सा आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी बाज लोग ऐसे हैं जो जोश से काम नहीं लेते, होश से काम लेते। जानते हैं बुर्दबारी होती क्या है, हिल्म होता क्या है, सब्र करते हैं और फिर उसका समरा भी खुद हासिल करते हैं कि जब सब्र किया था तो उसका फायदा हुआ क्या। घर को टूटने से बचाए उस शख्स ने इस अच्छी खसरत की वजह से। यह थी बुर्दबारी, अलहिल्म। अना क्या है? अल अना, अना जो उर्दू में हम जानते हैं तकब्बुर, वो नहीं है। अल अना अरबी में लफ्ज अना जो हम उर्दू में कहते हैं वो अना से लिया गया, अना मैं। ये तकब्बुर है, अल्लाह ताला पसंद कभी नहीं। अल अना यानी आहिस्तगी, जल्दबाजी ना करना, ये और खसलत है। अना और तकब्बुर ये और खसलत है, दोनों मिक्स कभी ना करना। फिरौन ने कहा अन रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अना कारून ने कहा उतीतु अला इल्मिन इंदी, ये जो खजाने हैं, जो मारो दौलत है, ये मैंने कमाई है, मैं, मेरी अकल ने, मेरी मेहनत ने, मेरी मेहनत है, मेरी अकल है, मेरी सोच है। ये अल्लाह ताला पसंद कभी नहीं। कारून को अल्लाह ताला ने जमीन में खस्फ कर दिया, धसा दिया उसके और उसके खजाने को, और फिरौन को पानी में गर्क कर दिया। तो अना और चीज है और अल अना और चीज है। एक को अल्लाह ताला बिल्कुल नापसंद फरमाता है तकब्बुर को, मैं, और दूसरी खसलत अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। कौन सी खसलत है? आहिस्तगी, जल्दबाजी ना करना। हिल में तो यही खसलत मौजूद है कि नहीं? जो बुर्दबार इंसान है वो भी तो जल्दबाजी नहीं करता ना, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है दोनों में कि हिल्म बुर्दबारी का ताल्लुक है दूसरों से। जब कोई गलती करता है आपके हक में, आप उसे माफ कर देते हो, इसे कहते हैं हिल्म। और अना का ताल्लुक उस इंसान की अपनी जात से कि वो खुद जल्दबाज ना हो अपने हक के ताल्लुक से, दूसरे के हक के ताल्लुक से नहीं। यानी मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ते हुए एक छोटी सी मिसाल, मैं तफसील बयान करूंगा इंशाल्लाह। बाज़ नमाज पढ़ते हैं जल्दी से। अब नमाज के अरकान है, वाजिबात है, आपको नमाज अना के साथ पढ़नी चाहिए, आहिस्तगी में पढ़नी चाहिए ताकि नमाज के अरकान मुकम्मल हो जाएं और नमाज के वाजिबात मुकम्मल हो जाएं और अल्लाह ताला के नमाज काबिल कबूल हो।

0: वह इधर है ना, जिसको मालिक इधर है ना, उसके सामने एक गाड़ी रखा पार्किंग में, अभी कभी निकलना मुश्किल होता है। अब ऐलान कर
1: कौन सा गाड़ी है,
0: कौन सा गाड़ी बता नहीं।
1: किसी ने गाड़ी पार्क की हुई दरवाजे के सामने, यहाँ पे जो घर है सामने मस्जिद की, अगर किसी ने गाड़ी पार्क की तो भाई को पता नहीं कौन सी गाड़ी है, वो कह रहे कि पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, तो प्लीज जिसकी गाड़ी तो वह हटा दे प्लीज। अभी पार्किंग खाली हो गई बाहर, तो जो साथी यानी देर से आए थे वो गाड़ी जरा दूर पार्किंग में खड़ी कर दें। जजाकुल्लाह खैर। तो जिहाद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए किया जाता है, इसलिए आप गौर करें कुरान मजीद में फी सबीलिल्लाह कैद मौजूद है, अहदीस में भी देखिए फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला के लिए। जिहाद पर मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, मैंने छह लोगों पर मुतालिक बात करनी है, जिसने जिहाद की तफसील समझनी है और सुननी है तो दुरुस्त हो चुके हैं जिहाद के, अल्लाह ताला फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह, और सीडी भी मौजूद है और नेट पर भी मौजूद है, असहाबुल हदीस .com अगर आप जाते हैं या असल अहले सुन्नत पे आप जाते हैं नेट से तो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और सीडीज भी मौजूद है, अगर किसी को सीडी चाहिए तो साथियों से रब्ता करें इंशाल्लाह उन्हें सीडी भी मिल जाएगी। तो जिहाद की मुकम्मल तफसील, जिहाद की हकीकत और जिहाद के मुतालिक अहकाम और मसाइल ये दुरुस्त हो चुके हैं, लेकिन यहां पर मुख्तसर मैं यह बयान करूंगा कि जिहाद पहले जो बुनियादी बात है का मकसद नंबर एक अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी है, नंबर दो मुसलमानों की जान इज्जत और माल की हिफाजत है। अगर यह मकसद मौजूद है किसी भी जिहाद में, जो आज जिहाद का दावा कर दिए दो मकसद मौजूद हैं तो फिर खैर है, तो पहली बात हो चुकी है। दूसरी बात, इस मकसद को पूरा करने के लिए जिहाद की शर्तें हैं, और उन शर्तों में से अब इमाम को होना जरूरी है, जो कायद हो, जो आपको बता सके आपने क्या करना, क्या कार्रवाई करनी, कैसी करनी है, और ये जो कायद है ये हक में वक्त की तरफ से मुतय्यन हो। आप अपनी जमात अलग से बना के अपना अमीर नहीं बना सकते, इसकी इजाजत नहीं शरीयत में। आज के जैसे अफरा तफरी है, हर ग्रोह निकलते अपना अमीर बना देते हैं, कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, फिर आपस में उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, काफिर दूर की बात आपस में लड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि असल में कायद उनको सही कायद नहीं उनके पास, और बगैर कायद के, बगैर झंडे के, बगैर राय के जिहाद नहीं होता, यह जिहाद की शर्तों में से है। फिर ताकत और कुदरत भी होनी चाहिए, अगर आपके पास ताकत और कुदरत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर सब्र करो, क्योंकि अगर आपके पास कोई ताकत कोई कुदरत है ही नहीं और दुश्मन की ताकत ज्यादा है, और ताकत से मेरा मकसद दो चीजें हैं, नंबर एक ईमान की ताकत जो बुनियाद है, नंबर दो असले की ताकत जो ईमान की ताकत के बाद है, क्योंकि हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिसालें मिलती हैं और कुरान मजीद में मिसालें मिलती हैं कि इन दोनों में से जो बुनियादी ताकत वो ईमान की ताकत है। जब ईमान की ताकत मौजूद है और असल की ताकत में कमजोरी है, ईमान की ताकत को अल्लाह ताला देख अल्लाह ताला नुसरत अता फरमाता है। लेकिन अगर ईमान की ताकत ना हो, ईमान ही कमजोर हो और फिर असल की ताकत भी कमजोर हो, मेरे भाई इसे जिहाद नहीं कहते, यह हलाकत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने आप को हलाकत में ना डालो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकाना हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, हमारे ऊपर फर्ज था कि हम मोमिनों को नुसरत करें। अल्लाह ने अपने ऊपर फर्ज कर दिया है कि मोमिनों का हक है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। आज जो कार्रवाई हो रही है, पिछले 60-70 साल से कार्रवाई हो रही है और इसे जिहाद का नाम दिया जा रहा है, अल्लाह ताला का तो वादा है कि हक है मोमिनों का, और अल्लाह ताला अपने ऊपर फर्ज कर दिया है कि मैं मोमिनों को जरूर कामयाबी अता फरमाऊंगा, जरूर नुसरत करूंगा मैं। लेकिन नुसरत हमें नजर क्यों नहीं आ रही, वजह क्या है? मेरा भी खलल अल्लाह ताला के वादे में नहीं है। अल्लाह ताला का वादा हक है, अल्लाह ताला सच्चा है, अल्लाह ताला का वादा भी सच्चा है, खलल हमारे अंदर है, नुक्स हमारे अंदर है, हमारा ईमान वो नहीं है, हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हमारा ईमान कमजोर है। और अगर देखना चाहते पूरी उम्मत का हाल देख लें, आज उम्मत का क्या हाल है, आज उम्मत जिल खुआर क्यों है देखना चाहते हैं तो मैं सूदखोरी की बात नहीं करूंगा, मैं हराम खाने की बात नहीं करूंगा, मैं वालदैन के नफरमाने की बात नहीं करूंगा, मैं चोरी डकैती की बात नहीं करूंगा, मैं जुल्म की बात नहीं करूंगा कि हकूक की अदायगी नहीं हो रही, दूसरों का हक खा रहे हैं, मैं कत्ल की बात नहीं करूंगा, दहशतगर्दी की बात नहीं करूंगा। जो सबसे बड़ा जुर्म है, जो सबसे बड़ी